जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं,

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ुम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीयू का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर और अति सुंदर भजन पैमला जैन के आवास में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लखबीर सिंह लाखा की आवाज में ये सुंदर भजन बस

सुंदर सा भजन पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में लखबीर सिंह लाखा की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम, और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा

भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में शर्मा जी की आवाज में अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

मुझको छेड़ो, ऐसे ना मुझको देखो, जो देखना ही कुछ तुमको है तो फिर मेरे दिल को देखो। हम प्यार के है राही, दिल प्यार की है मंजिल, किस काम की ये महफिल, दिल से न मिला जो दिल हो।

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम। कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया ओ प्रिया। कहीं प्यार ना हो जाए।

जुबिन एंड नीति मोहन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-62-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में

हिंदी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर, किसी से तुम प्यार करो कहीं देर ना हो जाए। कुमार सानू एनाल का हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम अंदाज, एक फिल्म जो 2003 में

आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL से वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश होगा एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना है।

कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24 घंटे बारह एक बार होता है उस पर आप दार कीजिए और सभी इन्फॉर्मेशन लीजिए 03-25-65-65-60 पर या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। उदित नारायण और अनुराधा पोटवल फिल्म का नाम कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम।

दिल ने कहा फिल्म का नाम एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है और आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना पेश की गए हैं। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। एक बार फिर से उदित नारायण और

में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नखमे प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले शान और संजीवानी की आवाज में ये

तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। 9:00 रहे हैं, प्रोग्राम में 6 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज मंगलवार का दिन है, 14 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन। यहाँ से पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम तकरीबन 11 बजे तक बस पेश किया जा रहा है, रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। बहुत से सुनने वाले होते हैं जो इस प्रोग्राम को गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा सुबह के वक्त बस सुनते हैं, तो सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को बस स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में।

अपना श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आसरो बैठे किए पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए जो पेश की गई 9:00 प्रोग्राम में 12 मिनट व्यतीत हो चुका है 12:09 स्टूडियो टाइम बाहर का मौसम की ओर देखा जाए धूप ही धूप का मौसम है और बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं दुनिया की कोने कोने में मुकेश एन आशा प्रोग्राम

रेडियो SBS की जरिए खास गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो में देखिए गाना मुखी सौराष्ट्र जी की आवाज में आपने सुना और काफी पसंद किया है। उसी सुनने वालों बस हमारा रेडियो SBS का ऐप पर गुड मॉर्निंग खुद मोर्ख ऐप किया है, सभी को अनहेलो खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। देश विदेश में भी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम। और प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। से ये प्रोग्राम हॉलैंड देश से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 030-2266-6611। गाना पेश करने से पहले हम किसी को बधाइयां देना चाहेंगे। इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाला अमोल कृष कुलशेस्त्र, उनकी आज जन्मदिन है, 14 तारीख जुलाई, जन्मदिन लाख लाख बधाई हो, शुभकामनाएं हो रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी उम्र 100 साल तक बस बढ़ते ही जाए और हर साल पूरा फैमिली के साथ परिवार के साथ अपना जन्मदिन को आप मनाते रहे। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से बस अमोल जन्मदिन लाख लाख बधाई हो, सालगिरह दिन बस बधाई हो। रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से हैप्पी

का रहने वाला हूँ। अमोल क्रिस कुलसेस्त्र का जन्मदिन है। रेडियो एसपीएस का पूरा टीम की तरफ से बस बधाइयां ही बधाइयां बस पेश की गई। चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा, द फिल्म हम जोली फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर ब्रेडा शहर के अंदर में रिकार्डो गफूर खान हमारा प्रोग्राम ब्रेडा शहर में बस सुनते हैं। और आज के प्रोग्राम में गाना मांग किया है और गाना का बोल है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो। अभी तो दिन शुरुआत हुआ है लेकिन रिकार्डो गफूर खान ब्रेडा शहर का रहने वाला, लीजिए आपकी मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है। जितेंद्रा का खास फिल्म है, मोहम्मद रफी एन आशा फ्रॉम द मूवी हम जोली, 1970 का फिल्म, नेहंती धोंद सुई फंतक का फिल्म है।

Ricardo Gafur Khan. खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, सुनना चाहते थे पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में, और इसी तरह से पेश की गए आसरोवी थे रिकार्डो, गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। शुभ दिन। और रेडियो SBS का प्रोग्राम ब्रीडा शहर के अंदर में जरूर और जरूर सुनते ही रहना, हर एक को बस खबर करते ही रहना। सभी कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन पर है 0325 65 65 60। इस तार के नंबर पर 24 हुई पड़ता हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। वैसे अपना मोबाइल टेलीफोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl, और उसी वेबसाइट के जरिए मेल भी आप कर सकते हैं, और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप 24 घंटा लगातार आप काम में ला सकते हैं, मेल आप कर सकते हैं, ऐप आप कर सकते हैं। 24 पर्दा स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, सुनने वालों तार कर रहे हैं, अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहते हैं धड़का है दिल में प्यार तुम्हारा, एक गाना भी होगा लता जी की आवाज में, और फिल्म का नाम जाल, उसी फिल्म का गीत आप सुनेंगे। नेह तीरों तो सुवर सस्त का फिल्म धड़का है दिल में प्यार तुम्हारा अभी अभी। और गाना को मांग करने वाली है रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय। गीता रॉय ने मांग किया है आज के प्रोग्राम में, तो चले गीता रॉय की मांगी हुई गाना मिलकर सुनते हैं।

0: एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई जाल फिल्म का नाम लता जी की आवाज में धड़का है दिल में प्यार तुम्हारा अभी अभी। ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली थी रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। आसर उम्मीद है कि गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मौसम भी आज का खूबसूरत सुहाना मौसम, धूप ही धूप का मौसम और गर्मी सा मौसम होने वाले हैं।
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Het Onze Lieve Vrouwen gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan nog steeds dat files in het midden en zuiden van het land. Vooral op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 13 kilometer file tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Door werkzaamheden op de A27 heb je 20 minuten vertraging daar. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is bijna 3 kwartier. En de linkerrijstrook is dicht op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Knoop de Brechtseplein 8 kilometer file. Door werkzaamheden op de A20 een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens staat door werkzaamheden in Duitsland een file van 4 kilometer op de grens. En de vertraging is zeker een half uur.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Go to your socials now and tell everybody that you love this radio station.
0: सर ये 9:00 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS की सर ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन 14 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो SBS का प्रोग्राम हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड में दूर दूर शहरों तक बौद्धगार में और आपके घरों में ये प्रोग्राम आप DAB प्लस रेडियो के जरिए सुन सकते हैं। और उसके साथ प्रोफेंसी साउथ हॉलैंड में भी सुतमेर डेलफ राइसवैग नो दौरब Blijswijk, Schiedam, Ridderkerk, Kapelle aan de IJssel, Krimpen aan de IJssel, Nieuwekerk aan de IJssel. Deze Bahusi Shahro Hute in provincie Zuid-Holland mee. Jahan par hamara program DAB Plus Radio ki zariye bhi sunai deta hai aapki gharon mein, aapki mauthakar mein. Aur bite hue dino Bahusi sunwalo aakar yahan par sunwalo jo aaspaas ki शहरों में रहते हैं हॉलैंडीज के बीच में आकर रेडियो SBS के पास अपना DAB रेडियो भी खरीदा है। तो बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो इन दिनों DAB प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में। बीते हुए दिनों कल भी लोग आकर यहां पर DAB रेडियो को खरीदा है रेडियो SBS के पास में। हर एक इंफॉर्मेशन जब भी आप लेना चाहेंगे कि किस तरह से आप हमारा प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए मौतोकार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं तो जरूर हर एक इंफॉर्मेशन के लिए भी आप रेडियो SBS के पास तार कर सकते हैं। जिस तरह से रोटरडम शहर के अंदर में हर रोज हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं DAB Plus रेडियो की जरिए और एक खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है महेंद्र कपूर जी की आवाज में हमरा फिल्म का गीत होगा ऐ फिल्म हमरा तुम अगर साथ देने का वादा करो सुन भाई महेंद्र कपूर रोटरडम शहर का रहने वाला हारोल्ड का खास मांगी हुई गाना

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये गाना पेश की गए, तुम साथ देने का वादा करो, हमरास फिल्म का गीत पेश की गए। रोटरडम शहर का रहने वाला हारोल्ड, हारोल्ड का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। हारोल्ड आसरो मीठे, महेंद्र कपूर जी की आवाज में गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए हैं, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना और हर एक को बस रेडियो SBS के बारे में खबर करते हैं।

रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है 40 साल से ज्यादा यूट्रेख्ट शहर से बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। आने वाले महीना एनन फेर तैयार होगा। इसी नाम के साथ रेडियो SBS नाम के साथ बस रेडियो का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। हम देख रहे हैं अब की बार फिल्म सौदागर, लता जी की आवाज में गाना को मांग करने वाली है, सुनना चाहते हैं आज की प्रोग्राम में एंगलांट साउथ हाउस से नाइला खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है। एंगलांट साउथ हाल में हमारा ये प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं और मुझसे गुजारिश किया है ये गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश करने के लिए, सुनना चाहते हैं तो चले मिलकर सुनते हैं लता जी की आवाज में तेरा मेरा साथ रहे, सौदागर फिल्म का नाम।

का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में की तेरा मेरा साथ रहे। 1973 का फिल्म 1973 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई और गीत को मांग करने वाली थी इंग्लैंड साउथ हाउस से खासतौर पर नैला नैला। ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। दस मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में। सुनने वालों आज मंगलवार है तो आज मंगलवार से आप दरियाफ्त कर सकते हैं मुस्कुराता दुकान के पास देनहाग शहर के अंदर में अपना रक्षा बंधन के लिए। आपको मालूम है कि फ्राइडाग 28 अगस्त शुक्रवार 28 तारीख अगस्त रक्षाबंधन है तो एक से एक खूबसूरत राखी रक्षाबंधन मुस्कुराता दुकान के पास अंदर आया है जो आपको स्पेशल प्राइस में दिया जा रहा है यानी कि किफायत सस्ती दामों में। तो जरूर दरियाफ्त कीजिए मुस्कुराता के पास कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर देनहाग शहर के अंदर में। बस हजारों हजारों रक्षाबंधन यहां पर अंदर आया है जो आपको बोडम प्राइस में दिया जा रहा है तो अभी से अपना रक्षाबंधन खरीद लेना देनहाग शहर के अंदर में जाकर मुस्कुराता के पास कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर यहाँ पर सतीश और हरप्रीत आप लोगों को बड़ी प्रेम के साथ स्वागत करते हैं। और जब भी आप मोटरकार से आप आएंगे तो खरातुस पार्किंग है। चलिए गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा फिल्म का नाम श्री 420 1955 का फिल्म 1955 तक का फिल्म है। दबाई थी मुकेश की आवाज में गाना आप सुनेंगे कि मेरा जूता है जापानी। रोटरडम नॉर्थ की रहने वाली शीला शीला ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है। फिल्म का नाम श्री 420 मेरा जूता है जापानी।

मेरा जूता है जापानी, श्री 420 उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। रोटरडम नोट की रहने वाली शीला, शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है शीला, जो रोटरडम शहर के अंदर में हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, स्टूडियो की ओर भी तार कर रहे हैं, ऐप पर भी अपना रिएक्शंस देते हैं।

0: सुनने वालों, हर एक काम काज के लिए आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारे, जरूरी खबरें के लिए रिक्लाम आपको देना है, ये तमाम कामकाज जो है सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है। अगर घर पर कोई भी खुशियां है और आप फरमाइश देना चाहेंगे, पति पत्नी की जन्मदिन है, बेटी बेटा का जन्मदिन है, विवाह है, शादी है, या कोई भी खुशियां है, किसी को आप सरप्राइज करना चाहेंगे, अपना पति को या तो अपना पत्नी को आप सरप्राइज करना चाहेंगे जन्मदिन के मौके पर, सालगिरह के मौके पर, तो आपकी फरमाइश जो है 5 यूरो पर फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। खबर तो आप सुनते आई है रेडियो SBS के जरिए कि आपकी फरमाइश इस महंगाई की जमाना में सिर्फ 5 यूरो में बस पेश किया जा रहा है। 5 यूरो इसलिए कि हम सभी आपकी खुशियां में भी शामिल है। तो अगर आपको फरमाइश देना है सस्ती दामों में, आपकी तमाम फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। न सिर्फ फरमाइश लेकिन आपकी तमाम रिक्लाम हुआ ये भी सस्ती दामों में, बोडम प्राइस में बस पेश किया जा रहा है। कोई भी खबर आपको देना है, रिक्लाम देना है, कोई भी पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया है, या तो अपना बदराइव से रिक्लाम आप देना चाहेंगे, अपना बदराइव के बारे में आप लोगों को खबर करना चाहेंगे, या कोई भी शो आप देने वाले हैं, तो हर एक इंफॉर्मेशन के लिए जरूर आप रेडियो SBS से कॉन्टेक्ट कीजिए। आपकी ये तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम सस्ती दामों में रेडियो SBS के जरिए बस पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम में होगा न्यूज, मौसमी समाचार और फरकेर्स इंफॉर्मेशन, उसके बाद तुरंत और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में।
1: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verbaais. 5 euro per verbaais. 5 euro per verbaais met gratis downloadlink na de verbaais. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
2: En nu het nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws op Radio SBS. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran een ballistische raket afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS, die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wilde VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Met Onze Lieve Vrouwen gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn nog een paar files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Knopend Everdingen 11 kilometer langzaam rijden. 40 minuten vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel. 12 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De A16 Breda-Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 10 बजकर प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है। चले एक गाना की ओर, फिल्म का नाम संगम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना जो अब कई बार पेश किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि देश विदेश में बहुत से सुनने वालों होते हैं जो रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं ऐप द्वारा। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और हमेशा और आज भी हमारा प्रोग्राम मॉरिशियस में दूषण जिंगरी भी सुनते हैं। और आप सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन पेश किया है। और आज की प्रोग्राम में खास गाना को मांग किया है, फिल्म का नाम संगम, द माइटी मुकेश की आवाज में। बोल राधा बोल, ये संगम होगा कि नहीं। मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत जिंगरे का खास मांगी हुई गाना।

राधा बोल के संगम होगा कि नहीं। फिल्म संगम का गीत पेश की गई द माइटी मुकेश की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना और मॉरिशस का रहने वाला दुष्यंत जिंगरे का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। दुष्यंत बस शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल फोन की जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। चलिए अब की बार गाना मन्ना डे की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार गाना को मांग करने वाला डेल्फ खाओ का रहने वाला शांति प्रकाश गाना बांग किया है आज की प्रोग्राम में। मन्ना डे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। डेल्फ खाओ का रहने वाला शांति प्रकाश का मांगी हुई गाना।

रेडियो SBS की जरिए मन्ना डे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर ये गाना आज की प्रोग्राम में डेलफ हाउ का रहने वालम शांति प्रकाश, शांति प्रकाश ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से डेलफ हाउ शहर में बस सुनते ही रहना। उसी सुनने वालों बस अपना अपना गाना को मांग किया है हटिस हिल्ड्रुक मेट टेलीफोन्स एंड एपियस। अब वैसे अभी अभी मैंने देखा देश विदेश में कहां कहां पर सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं। मैं तो भी घबरा गया इतने देशों में सुनने वालों बस हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मॉरिशस, पाकिस्तान, स्वीडन, इंडिया, भारत देश, जर्मनी, रूसलैंड, सूरीनाम देश में भी, हंगरी, स्विट्जरलैंड, फ्रांकफ्रैंक, थाईलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम और अमेरिका में काफी लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। फ्रांस, गुयाना अभी अभी मैंने देखा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में भी काफी सुनने वालों बस हमारा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसे ग्रीकलैंड, ग्रीकलैंड के साथ बहुत से देश है जहां पर रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनने वालों बस सुनते हैं। मोस्ट पॉपुलर रेडियो स्टेशन मलेन देश के बाहर जो सुनने वालों बस सुनते हैं ओक इन इंडोनेशिया में भी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं और नॉर्थ कोरिया में। अब वैसे नॉर्थ कोरिया में वहां पर पब्लिक रेडियो एंड टेलीविजन होते हैं जिस तरह से यहां पर हॉलैंडीज के अंदर में NOS होता है, वहां पर लैंडलक रेडियो एंड टेलीविजन जो होते हैं उसका नाम भी होते हैं SBS, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो काफी देशों में इसी नाम के साथ रेडियो या टेलीविजन का प्रोग्राम पेश होते हैं। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में ये नाम काफी पॉपुलर है। एंटोफ शहर के अंदर में रहता है हैंक महावीर और हैंक महावीर भी हमेशा एंटोफ शहर के अंदर में हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हैंक महावीर एक खास गाना मांग किया है, काफी पुरानी फिल्म का गीत मांग किया है। फिल्म का नाम मेला मुकेश और शमशाद बेगम। प्रोग्राम में मैं भौरा तू है फूल ये दिन मत भूल जवानी लौट के ना आए।

पुरानी फिल्म मेला का गीत पेश की गए मुकेश और शमशाद बेगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एंटोफ शहर का रहने वाला हैंक महावीर ये खास काफी पुरानी फिल्म का गीत आज के प्रोग्राम में मांग किया। आसरो मीठे भाई हैंक महावीर गाना सुनकर और काफी पसंद किया है। और आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। आठ मिनट बाकी है सुबह साढ़े 10 बजे में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की सरिये।

किशोर कुमार की आवाज में। और लिस की ओर देखा जाए तो बारन द्रेख्त शहर से प्रेमनाथ ने तार किया है स्टूडियो की ओर और एक खास गाना मांग किया है। फिल्म का नाम दूर का राही। सॉन्ग बाय किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

साइड द फिल्म दूर का राही सुनगाई किशोर कुमार की आवाज में गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। और देखा जाए खासतौर पर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में गाना को मांग करने वाला था बारंद्रेख्त शहर का रहने वाला प्रेमनाथ, ये गाना बस आज की प्रोग्राम में मांग किया। प्रेमनाथ आपके तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। इस वक्त घड़ी की ओर देखा जाए 2 मिनट बाकी है 10:30 में 2:04 12 स्टूडियो डेट हो चुका है। चले यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खबरें की ओर, उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A15 Rotterdam-Gorkum bij de Noordtunnel 2 kilometer door een te hoge vrachtwagen. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel 11 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de A76 in Limburg vanuit Geleen naar de Duitse grens 5 kilometer file door werkzaamheden in Duitsland op de A4.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Radio SBS, the best Bollywood station.
4: तो चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो एसबीएस का एप नंबर 0362266611 इसी डायल के नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं हो सकता है कोई गाना आप सुनना चाहेंगे तो जरूर आपको मौका दिया जा रहा है हर एक गाना मांग कर सकते हैं लेकिन आपसे गुजारिश किया जा रहा है सिर्फ यही गुजारिश है कि आप समय पर अपना गाना को मांग करें तकरीबन 11 बजे तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बस पेश किया जाएगी हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक रोटरडम शहर के अंदर में सबीना भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं सबीना आपको भी शुभ दिन और खास पाकिस्तानी फिल्म का गाना आपने मांग किया है फिल्म का नाम घराना पाकिस्तानी फिल्म घराना का गीत बस प्रोग्राम में पेश होगा और गाने वाली होगा नयारा नूर नयारा नूर के आवाज में और गाना का बोल है तेरा साया जहां भी होगा सजना तो चले रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना की मांगी हुई गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

पाकिस्तानी मूवी घराना का गीत पेश की गई नयारा नूर की आवाज में अभी आपने सुना तेरा साया जहां पर भी हो सजना। गाना को मांग करने वाली थी रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना। सबीना की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। काफी खूबसूरत गाना आपने मांग किया आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम सबीना जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक गाना होगा लता जी की आवाज में और फिल्म दो बदन आमस्टरडम साइटोस से श्रीमती बेया एक गाना मांग किया है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और मांग किया है फिल्म दो बदन का गीत।

गाना जो पीस के गए लो आ गए उनकी याद, दो बदन फिल्म का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में। आमस्टरडम सुइटहोस की रहने वाली श्रीमती बेया की खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज मंगलवार का दिन है, 14 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। ये लोग की आज जन्मदिन है, सालगिरह दिन है, सभी को बधाइयां मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। और जो बीमार या लाचार है, भगवान से प्रार्थना है, अल्लाह से दुआ है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। सुनवालो, आपको खबर किया जा रहा है 21, 22 और 23 तारीख अगस्त 21, 22 एंड 23 अगस्तस द एर्स्ट एंड द ग्रोटस्ट मिलन समर फेस्टिवल होने वाले है फॉर द 42वें कीर साइड पार्क देन हाग शहर के अंदर में। और स्पेशल आपको खबर किया जा रहा है फ्राइडे 21 अगस्तस शुक्रवार 21 तारीख अगस्त लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद फुल बैंड के साथ, अपना फुल म्यूजिक ग्रुप डीले नादान के साथ लाइव ऑन स्टेज रहेंगे मशहूर गाने वाला रेमोन रामनारायण। फ्राइडे 21 अगस्तस और वो भी मिलन स्विमर फेस्टिवल देन हाग साउथ पार्क में। सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है मिलन स्विमर फेस्टिवल .nl, मिलन स्विमर फेस्टिवल .nl, उसी वेबसाइट पर सभी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एडसाइन नोक एंकल क्रांपियस फ्राइडस भाड़ा पर लेना है, सामान बेचना है या कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों को देना है तो ग्राम फरहूर के लिए भी आप मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर आप जाइए, उसी वेबसाइट की जरिए अपना टिकट भी आप खरीद सकते हैं। और खबर मिला है कि इस साल टिकट काफी जोर तोड़ से बिक रहा है मिलन समर फेस्टिवल Den Haag Zuiderpark में इस साल 21, 22 en 23

शहर के अंदर में राज भी काफी बार यूट्रेख्त शहर में आए और कहा यूट्रेख्त काफी खूबसूरत शहर है, ये तो हमें मालूम है, इसलिए तो हम कहते हैं मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड। तो राज भी इस वक्त गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और एक गाना मांग किया है लता मंगेशकर और नितिन मुखीज की आवाज में, क्रांति फिल्म का गीत मांग किया है, 1980 का फिल्म, 1980 का फिल्म जिंदगी की नाजुक से लड़ी। एंटोवे शहर का रहने वाला राज ने मांग किया है ये खास।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म क्रांति का गीत अभी आपने सुना। मनोज कुमार और खासतौर पर हेमा मालिनी फिल्म में काम किया है। इन दोनों की एक्टिंग किया हुआ गाना फिल्म क्रांति से बस पेश की गई। एक फिल्म जो 1980 में रिलीज किया गया है। एंडहोफ शहर का रहने वाला राज का मांगे हुए ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए। राज, आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 7 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, 7 मिनट बाकी है 11 बजे में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार एक आखिरी और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं स्टूडियो के अंदर तार अभी तक आते हैं। सुनने वालों, आपसे निवेदन है, गुजारिश है, गाना के लिए अब मत तार कीजिए या तो ऐप कीजिए, इसलिए कि पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। आखिरी गाना जो पेश होगा और ये रोटरडम शहर की रहने वाली रिया। रिया ने स्टूडियो की ओर तार किया, कुछ बातें हुए, हंसी मजाक भी हुए और एक गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है किशोर और लता जी की आवाज में। एक गाना जो हमारी बहुत सी सुनने वालों भी पसंद करते हैं, तो आज की प्रोग्राम में रोटरडम शहर की रहने वाली रिया ने मांग किया है, रहे ना रहे चाहे हम और तुम। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का आखिरी गाना और आखिरी सुनने वालों का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर एंड लता की आवाज में।

0: Ik ben hier, Groep Suraganan. Een hele mooie nummer. Gezongen door Kishore en Lata. Film Kadam, Ek Ladki Badnaam Si. Rotterdam ki rehne wali Ria. Ye khubsurat gana achi program mein maang kiya. Ria, aapko bhi shubh din pesh kiya ja raha hai. Aur Radio SBS ka program zarur aur zarur Rotterdam shahar ke andar mein sunte hi rehna. रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम प्रोविंसी साउथ होलैंड में जहां पर ये प्रोग्राम डीएबी प्लस रेडियो के जरिए सुनाई देता है बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी हमारा प्रोग्राम में साथ दिया है सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना प्रोग्राम में कुछ खबरें होगा खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं
1: एंड न्यू रिक्लामे न्यूज एंड इट वेयरबरिक्ट ऑफ रेडियो एसबीएस
2: दिस इज द म्यूजिक फॉर्स मिलन समर फेस्टिवल 2026 Vrijdag 21 augustus, voor het eerst, voor jong en oud,

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। सुन वालों आज मंगलवार का दिन 14 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह शुभ दिन। मौसम आज का खूबसूरत सुहाना मौसम है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये

रेडियो SBS की जरिए संगीत भरी स्टेशन और रेडियो SBS की जरिए ये गाना बोस प्रोग्राम में पेश हुआ है। दिल की हर धड़कन आपसे मिल गए, एक बड़ी ही

है सनम। गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो वेस्ट में इसकी जरिया आज की सुबह की प्रोग्राम में आसरो बीट है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में

12 बजने में आहिस्ता आहिस्ता हम सभी दोपहर की ओर जा रहे हैं, मेरा की ओर और रेडियो SBS का खास प्रोग्राम में। सुबह की प्रोग्राम में कुछ खूबसूरत गाने नख में आपकी सेवा में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना कुछ गाने नए आवाज में, नए संगीत में आपके लिए बस पेश किया जा रहा है आज की इस सुबह के प्रोग्राम में।

आज मंगलवार की खास सुबह के प्रोग्राम में ये गाना पेश की गए, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार के नंबर पर सभी इन्फॉर्मेशन 24 पर दाग आप ले सकते हैं। अपना फरमाइशी के बारे में तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम जो भी आपको देना है सस्ती दामों में बस पीस किया जा रहा है। अब ऐसे रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए। एक गाना और होगा, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर, रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फरकेर्स इन्फॉर्मेशन की ओर।

60-11. चलिए अब की बार कुमार सानू जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे घी गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म गुड लॉक उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है सुखविंदर सिंह और शिल्पा राव की।

सुखविंदर सिंह एन सिल्वर राव की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना प्रोग्राम में कमल खान और नीति मोहन के आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया।

की गई रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। हरिहरन आपकी बार प्रोग्राम में

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। उदित नारायण और श्रेया जी

चलिए गाना बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में ये गाना।

अबुल सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रभा की आवाज में। तो फिल्म परवाना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपके बाहर फिल्म खेल की ओर हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। एक बार फिर से कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है और

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। उदित नारायण।

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अतीफ असलम की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

अतीफ असलम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई एक गाना बस प्रोग्राम

मत से खयामत तक उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना वस्त्रों का भी पेश की गई है। फिल्म का नाम कयामत, एक फिल्म जो 2003 में बस रिलीज की गई है।

या बांस में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की सर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से अलका जी की आवाज में खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है, साथ में होगा

ब्रोमिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई है। चलिए गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में। सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश की आवाज में

तभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आपको हम खबर करना चाहेंगे, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 11। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

स्पीच की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में और बेहद पसंद किया है। तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गाना जो आपकी बार पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी खासतौर पर मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में अबकी बार फिल्म अमर दीप का गीत सुनते हैं।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा की आवाज में ये गाना अंदाज, फिल्म का नाम

पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्म 20 साल बाद, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना और जनरल हेमंत कुमार का गाया हुआ गाना। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार फिल्म छाया की ओर हम आपको ले चलते हैं। 0302 62 66 11 स्टूडियो का टेलीफोन।

रेडियो SBS के जरिए छाया फिल्म का गीत बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में ये गाना पेश हुआ है। चलिए फिल्म स्कूल मास्टर की ओर एक बार फिर से तलत महमूद और लता है।

इस करके आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए फिल्म फंतोस की ओर। किशोर और आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

पे और मैं पैदल, तू हो ठेले पे और मैं पैदल। हमने किसी पे डोरे डालने हैं, ओ डोरे, हमने

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म पत्थर की सनम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

बिंदिया चमकी चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। इस गजल दूर सोनू निगम एनल के याचने कैन कम तो द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Geet om Kille Her hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

सुन मेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर इस खजानदार अखिल सचते वैंकवा आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, कौन खजानदार सोनू निगम एस निधि चौहान मैंने दिल तुझको दिया। इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज सॉन्ग डोर अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपटी. हाँ द फेदर मैथ जुबेन नोटियाल मैथ आउट ऑफ द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

कुछ खास है, एक अजनबी एहसास है, वॉज द फिल्म फैशन, गजंग दुर मोहित चौहान एंड नेहा भासिन। इन द प्रोग्रामा गीतों के लहर इज द फॉलोइंग लीजिए, गजंग दुर जगजीत सिंह। द फिल्म सरफरोश कौमत, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है।

मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाज में परम सुंदरी, और अब आप सुनिए रहना है तेरे दिल में से, सच कह रहा है।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचक कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चढ़के।

कैसा है चिनाब का, इस गजंगे दौर किशोर कुमार। एंड आउट द फिल्म चलती कराम गाड़ी कम्स गजंगे दौर किशोर कुमार वेयर एक लड़की भीगी भागी सी।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार सानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे। मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तो किलहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।

0: क्वेश्चन आपका,
1: क्या ख्याल है आपका,
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए।
0: हाल कैसा है जनाब का,
1: क्या ख्याल है आपका,
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए।

0: मुख्तार जी, कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं, और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।